0: गुलाम तुम भी थे यारों, गुलाम हम भी थे। नहा के खून में आई थी फसले आजादी, मजा तो तब था कि मिलकर इलाज जहां करते, खुद अपने हाथ से तामीर गुलसितां करते। हमारे दर्द में तुम और तुम्हारे दर्द में हम शरीक होते।
1: या चश्मा।